62 पैसा। साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिद दर 40 रुपियाँ 49 पैसा, बिक्री दर 40 रुपियाँ 65 पैसा। कटारी रियाल एकको खरिद दर 41 रुपियाँ 71 पैसा, बिक्री दर 41 रुपियाँ 87 पैसा। थाई भाट एकको खरिद दर 4 रुपियाँ 60 पैसा, बिक्री दर 4 रुपियाँ 62 पैसा। युएई डिरहम एकको खरिद दर 41 रुपियाँ 40 पैसा, बिक्री दर 41 रुपियाँ 57 पैसा। मलेजियन रिंगित एकको खरिद दर 37 रुपियाँ 18 पैसा, बिक्री दर 37 रुपियाँ 33 पैसा। साउथ कोरियन वान 100 को खरिद दर 10 रुपियाँ 67 पैसा, बिक्री दर 10 रुपियाँ 72 पैसा। स्वीडिश क्रोनर एकको खरिद दर 16 रुपियाँ 5 पैसा, बिक्री दर 16 रुपियाँ 11 पैसा। डाइनिस क्रोनर एकको खरिद दर 23 रुपियाँ 47 पैसा, बिक्री दर 23 रुपियाँ 56 पैसा। हङकङ डलर एकको खरिद दर 19 रुपियाँ 38 पैसा, बिक्री दर 19 रुपियाँ 46 पैसा। कुवैती डिनार एकको खरिद दर 495 रुपियाँ 15 पैसा, बिक्री दर 497 रुपियाँ 10 पैसा। बारेन डिनार एकको खरिद दर 403 रुपियाँ 29 पैसा, बिक्री दर 404 रुपियाँ 88 पैसा। र अन्तमा ओमानी रियाल एकको खरिद दर 394 रुपियाँ 95 पैसा, बिक्री दर 396 रुपियाँ 50 पैसा। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो आजको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दर। अब गीत संगीतको पालो बी8 अनि सुरक्षा मल्लको यो गीत स्वीकार्नुहोस् बेकाबु।